गणेवे सचिया बाजा बिन से पाप घनेरे पास पारे मग दे कोई तारे वाली पैसी

लक्ष्मी मेर प्रयात रखना। स्वर्गवासी माता से इंद्रकार धर्म पत्नी स्वर्गवासी कल्याण सिंधी सलूजा समूह परिवार वल्लों सलाना बरसी दे नमत आप जी दे जूरी अखंड पाठ साहिब।

मनोकामना दी पूर्ति लई बेनती कर दे। सरदार परमजीत सिंह जी वीर जी दिल्ली निवासी आप जी दे हजूरी विच श्री दसम ग्रंथ साहब जी दे अखंड पाठ भेटा 13000

आत्मक शांति लई स्वर्गवासी चरण सिंह जी रोड़गी परिवार वालों माया हाजर होई विछड़ी हुई आत्मा नू आप जी दे चरण कमला नवाज बख्शना।

गुरु रिवाज अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हाजरिया भरदे होए कीर्तन दे सत्काव जो संगता लो बेंत माया हाजिर होए जिस खजाने बिच माया हाजिर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जीवन बसना दे अरुकता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

बसंती संदूर सुहाई सरस्वही लै पहर जा संगलाई पांच आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बानु अवाहे बिनुदा गावे सरस।

जी गुरु गुरु निवास अंतर्जामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी पावन पवित्र स्थान तख्त सतखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कृतन दे सतकाव जो संगतां वलों बिनत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने पर शुकर करना नाम दान गुर सिखी वाला जन्म स्थान देह अरुपता बख्श नियासा मन सासम प्रकरणी यात्रा सफल करनी।

दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। एक ओंकार सदगुर प्रसाद उतार खासे दस कद का पात।

सर्व लोह जी दी सदा रक्षा हमने। आगे लिखारी के दस्त का तो प्रसाद चौपई प्रणवो आदि कंकारा जलतल महियल की ओपसारा आत प्रगम गब अवनासी लोक छत्र जोत प्रकाशी हस कीट के बीच समाना राव रंग जह एक सर जाना अदबै अलख पुरक अभिगामी सब घट घट के अंतर जामी अलक रूप अच्छा अनभेखा राग रंग जह रूप ना रेखा वरण चैन सब हूते न्यारा आद पुरक अदबै अभिकारा बरन चैन जय जात न पाता सत्र मित्र जह तात न माता सबते दूर सबन

चरण शरण जय बसत भवानी, ब्रह्मा विषण अंत नहीं पायो, नेत नेत मुख चार बतायो, कोट इंद्र उपेंद्र बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाय।

सर्व जोत के बीच समाना, सब हूँ सर्व ठोर पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलग पुरख अवगत अवधूता, जात पात जय चेहना बरना, अवगत दे अक्षय अन भरमा, सबको काल समन को करता, रोग शोक दोकन को हरता, एक चेत जय है एक छेन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी, कहूँ महादान हो के मांगे धन देत हो, कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तास बेपरीद कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ जज गंधर्व उरक कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो, कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुप जपे हो, कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोप काव होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तासु बेपरीद कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो, कतहूँ बिचारा विचारत को विचारत हो, कहूँ नेज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तास बेपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देवानी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्मधामी कहूँ सर्व ठौर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धारे ब्रह्मचारी कहूँ जो साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पतारे कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो, कतहूँ सिपाही होके सादत सिलाहन कह, कहूँ छत्री होके अर मारत मारत हो, कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कतहूँ पयुग होके पीवत पिबावत हो, कतहूँ मयुग ऊ कहूँ मद्यपान हो, कहूँ माँ सूर होके मारत मवासन कह, कहूँ माँ देव देवतान के समान हो, कहूँ महादीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयं कहूँ पूरण प्रजं कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुतत कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पवनहारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ योगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छालाधारे छैल भारी कहूँ छक्कवारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाय कहूँ नृत्य के नचय कहूँ नर को आकार हो, कहूँ बेदवानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजाय कहूँ धेन के तरैया कहूँ लखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शोधता किसान हो के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दो की निरंकार हो, निर्जोर निरूप होके सुंदर स्वरूप होके भूपन के भूप होके दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिव्या रोग शोक के मिटैया की दोमानी महामान हो, विद्या के विचारों के अदम अवतारों के शुद्धता की सूरतों की शुद्धता की शान हो, जोवन के जाल हो के काल हो के काल हो के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला।

सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक सोत समूह सिद्धान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुराधन सोत सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब दे निशान को बाजा ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कान के नहीं नहीं जाद विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथन हंदे आदम दाम सो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान समान के पेख है पौन हा जति जधार सो विचार हजारक देख पौन हार जति जधार सबे सो विचार हजारक देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख सो दसुपा दुरंत वास सासना दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंक हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचारे सार की धार बछैया तोर दे मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक दिवैया दानव देव फनिन निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार ध्यान पापन के बहुपुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिर जाग सत्र सबै और लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधिप जौंतर लोग को राज करेंगे कोट स्नान के जातिक दान एक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्मेश्वर विषण सचिव पद अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास की हो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैद बितायो साजे कहो सोने ले हो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखे रवाची दिशा में काहू पछा को शीश निभायो को उपतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो पूर्व क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछज तेज उदार अनभेद रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृद भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत भेद जय नेत्र निगम कहंत मुख चार बकत बेअंत अनभेद अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीने जगत पसार अभ्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार
कई इंद्र बार बुहार, कई वेदा मुखचार, कई रुद्र छुद्र स्वरूप, कई राम कृष्ण अनूप, कई गोप का भणंत, कई वेद भेद कहंत, कई शास्त्र सिमृत बखान, कहु कतत हीसो पुराण, कई अगन होत्र करंत, कई उर्द ताप दुरंत, कई उर्द बाव सन्यास, कहु जोग भेद उदास, कहु नीवली करम करंत, कहु पवन हार दुरंत, कहु तीर दान पार, कहु जग करम उदार, कहु अगन होत्र अनूप, कहु न्याय राज विभूत, कहु शास्त्र सिमरत रीत, कहु वेद स्यो विपरीत, कई देह देश फिरंत, कई एक ठौर स्थंत, कहु करत जल में जाप, कहु सह तन परताप, कहु बाद मनह करंत, कहु ताप तनह सहंत, कहु ग्रह द्रम अपार, कहु राजवीत उदार, कहु रोग रहत अभरम, कहु करम करत अकरम, कहु शेख ब्रह्म स्वरूप, कहु नीत राज अनूप, कहु रोग शोक विहीन, कहु एक भगत अधीन, कहु रंग राजकुमार, कहु वेद व्यास अवतार, कई ब्रह्म वेद रटंत, कई शेख नाम उच्चरंत, बैरा कहु संन्यास, कहु फिरत रूप उदास, सब कर्म फोकट जान, सर्व धर्म नहपल मान, बिन एक नाम आधार, सब कर्म भरम विचार, तो प्रसाद लगुन राज छंद, जले हरि थले हरि, उरे हरि बने हरि, गिरे हरि गुफे हरि, चिते हरि नबे हरि, इहा हरि उहा हरि, जिमी हरि जमा हरि, अलेख हरि अभेग हरि, अधोक हरि अद्वैक हरि, अकाल हरि अपाल हरि, अछेद हरि अभेद हरि, अजंत्र हरि अमंत्र हरि, सोतेज हरि अतंत्र हरि, अजात हरि अपात हरि, अमित्र हरि अमात हरि, अरोग हरि अशोक हरि, अभर्म हरि अकर्म हरि, अजय हरि अभय हरि, अभेद हरि अछेद हरि, अखंड हरि अभंड हरि, अदंड हरि प्रचंड हरि, अतेव हरि अभेव हरि, अजेव हरि अछेव हरि, भजो हरि सपो हरि, तपो हरि जपो हरि, जलस्तुहि थलस्तुहि, नदीस्तुहि नदस्तुहि, वृक्षस्तुहि पतस्तुहि, क्षितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि, भजस्वंग भजस्वंग, रटस्वंग ठटस्वंग, जिमितुहि जमातुहि, मकितुहि मकातुहि, अभूतुहि अभयतुहि, अछूतुहि अछयतुहि, जतस्तुहि व्रतस्तुहि, गतस्तुहि मतस्तुहि।

फूक माल हारी का जगत हाबी बुधारी के दुआ मसान वास करो ही करत है। घुगुमट वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदैव मोहन सादे ही मरत है। बिंद के सदै हीज की बटैया देत बंदरा सदी उपाय नंगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण ज्ञान के भीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी से छौना सब दूधाधारी पवन के हारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भसैया दान लोभ के तजैया दे तो गहुअन के जैया मृग भैया मानियत है। नब के उड़या दाय पंछी की बटैया दे बगला बिंडाल ब्रेक ध्यानी ठानी आते हैं। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनी आते हैं। भूम के भसैया दाय भूसरी के जैया कहे नब के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भचैया दाय बांदरी के जैया कहे आदित फिर दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आके भचैया सो चकोर समानी है। सूरज सिवैया दाय कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि का पहचानी है। नारायण का छमा तेंदुआ कह सब कौल लाभ कौल जय ताल में रहते हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही आते हैं। माधव भवर और कन्हैया नाम कंस को बदय जम दूध कही आते हैं। मूड रूट पीटत ना गूढ़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रही आते हैं। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहते हैं। जोगी जटा धरी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या देह पे सहत है। निवलीकरम जल होम पावक पवन होम अदो मोय पाए ठांडे न बहते हैं। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद वेदो कतेव नेत नेत कह कहते हैं। नाचत फिरत वोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ओही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपजते इंद्र सुना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के बीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकनी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गय एक फेर भय राम चंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोंदी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते कालबाज भय है। पीरा पिकामर के ते गनेना परते ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्रे की छाया कई कोसला चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरा देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलते है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करते है। दारा से दिली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलते है। सिज दे करे अने तोपती कपड़ भेज पोस्ती अनेक दानी वावत है शीश का भयो मल जबे काटते अनेक दंड सोतना डंडा अष्टांग तीस का भयो रोगी जबे डारे रहे उर्दवक बनते ना मुंडना रहे आदिश कामना अधीन सदा दामना फिर भी एक भावना भीन कैसे पावे जागे जीश का शीश पट कत जागे कान में खजूरा धसे मुंड छट कत मित्र पुत्र होके शोक सा आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरों ना भोग सा का भयो भेड़ जो घसा सिर बिछन सा माटी को बछैया बोल पूछ लीजा जोग सा कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेटे पर लोग सा नाचोई करत मोर दादर कर शोर सदा घन घोर घन करे ओई करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँ भूक श्रावक धरत है। पाहन अनेक जु एक ठोर बास करे कागौर चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के भीन मा दान में न हुजलीन भावना किन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी को जो गया बैरागी मने कब हूँ सन्यास भेद भन कह दिखावई कौ पौन हरी कौ बैठे लाए तारी कौ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कौ ब्रह्मचारी कौ हाथ पे लगावे बारी कौ दंड धारी हो गए लोगन भ्रमावई कामना अधीन परे नाचत नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे भ्रम लोग पावई। पांच बार की दर पुकारे पर शीत काल कुंचरा गदहा अनेकता पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी भी चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंगदार डार डार फांस ठग मार मार डार ही
डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना भिन्न कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पाइये अतापना तापना अनेक कन घायल सहते है जाप के किए जो पाइये अजाप देव पूजना सदी तू ही उचरत है नव के उड़े ते जो नारायण पाइये नलक पंछी डोल वो करत है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी क्यों भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को योगी भयो को ब्रह्मचारी को जतियन मान हिंदू तुरक को राव जी माम सभी मानस की जा सब के पहचान बो करता करीम सोए राज करही मोई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जान बो देहु राम सी सोई पूजाओ निवाजोई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जच्छ गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेस नैने के गाने के दे के बान खाक बात आता सो आपको रलाओ है अल्लाह भेक सोई पुराना कुरानो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है जैसे आगते कनुका को उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे जैसे एक नत्ते तरंग को उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपाजे सब ताही में समाएंगे केते काछ मज केते उनको करत भच्छ केते अच्छे वच्छ हुए सपच्छ उड़ जाएंगे केते नव बीज आज पाज को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज युवा तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केते उदासी की भ्रमाई फिरत है करवा सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुखा भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के बीन जग जारी मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पज हारे पंडित

ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्ध दबद्ध दबृद रूपंग नहीं जान जाई कछु रेखंग कहा बात ताको फिरे कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं ना आवे ना रोगंग ना शोकंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जनमंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आदा भंगे नमो आदा भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेरे बेटे मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वय अविनाशी परेयंग पराप्रम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्माथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग भूतंग भेकंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अक्षय आदद्वय अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधे ना रोगंग ना शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भ्रमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भ्रमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अच्छे आद अविक्ते अथापे विभुक्तंग अच्छे आद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना साके ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना वितरंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद्रूपे नमो आद्रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेक रेहं कहूं देह दोखं कहूं खदि रोग के शोक शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत पानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूमि की भुगत में भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के भ्रष्ट के रेष्ठ पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्यो बानी कहूं कोक की गाव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरारा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राजीतं कहूं पूरण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं छत्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेर भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षराम अक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छाल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अक्षय जी अक्षय आदत भय विधाता ना त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तु अस्तंग अभूते तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यग तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप अद्वय अनासन तोट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनुभूते रन छेज काल करता सदी हरता सनात
आसन डोलन भूत करम दाता दयालन भूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गेने व्योध पान जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय ने गेने चैन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम भेग जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गेने पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग व्या जय रोग शोक नहीं शत्रु सात जय त्रासवाद नहीं देना जय आदंत नहीं रूपरास जय रोग शोक नहीं जोग जुगा जय त्रास नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्योला अंग अक्षय स्वरूप अक्षय भंग जय नेत ने उचरंत भेद जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतो जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलव योग साधन दुरंत तन शीत घाम पर खास हंत कई कलव एक आसन वितंत कई जतन योग विद्या विचार साधन तदप पावत न पार कई उर्द बादेशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कोप काव कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भच्छ नहीं तब दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद री जग आदि क्रम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देद देद भाका रटंत कई देद देद विद्या पढ़ंत कई करंत भांत भांतन विचार नहीं नायक ताल पायत न पार कई तीरा तीरा धर्म सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप ताल पायत न पार कहूँ राजीत कहूँ योग धर्म कई सिमर शास्त्र उच्चर सो करम निवली आद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मक्रो बखान कहूँ करत भ्रम विद्या विचार कहूँ योग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितर कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरित उच्चार कही भजत एक पग निराध

कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदव तास पायत न अंत कई करत कोड विद्या विचार नहीं तदव देष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जग दान बिन एक नाम एक चैत्य लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जंप हो जुगाणे जूह जुवंग भय कंप हो मेरे पयाल भुवंग तप ताप सर्व जलेरु थलंग धन इचरत गुंद्र उमर बलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद सरु अभेद अभियंग अनखंड भूत छेद छियंग अनकाल अपाल दियाल सुवंग जय ठटिया मेरा काल भुवंग अनखंड मंड प्रचंड रंग जय रचेंग देव अदेव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचेंग सरम मकीन मका जय रागना रूपना रेख रुखंग जय तापना सापना सोग संग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय खेदना छेदना छेद छेंग जय जातना पातना मात पितांग जय रचेंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैगना दागना दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नौ खंड सचियो रस्ताम तेज अतेज की अनुभव पदा प्रचंड लियो श्री सिंदर बिंद नगेंद नगंग श्री जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उद भुजंग के देव देव सराज पितंग अन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुजंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच जुवंग नान नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाय भुजंग दिए गज बाजरत अधिक पांच गणंग भूत भरुग भवान तुवंग जय अंड से भूमगाल जंग रंग पावर पवन प्रचंड बलि बन जास की फल फूल कली वो मेरा का निवास हितंग रज रोज काज चंद्र मृतंग दो तो चंद दीनी सा दीप दई जय पावन पवन प्रचंड मई जय खंड खंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतर चार रचे नर गंधर्व देव देव सचे अन धूता भूता छूत बदंग अन गाधा व्याध नाद गतंग अन खेदा भेदा छेद नरंग जय चार चतरदा चक्र फिरंग जय रागना रंगना रेग रुखंग जय सोगना भोगना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंदर देव देव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पारना पावत पूर्व मदंग अन खंड सरु अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंध अधोमुख ताप तपै कई कल्पन लो तप ताप करे नय नय कृपा निध पान प्रय जय फोकर धर्म सब तज है चित कृपा निध को जप है तेव या भव सागर कोतर है भाव भूल ना दे पुनर्धर है एक नाम बिताने कोड प्रीतिम वेद उचार सासुति जो वारस के चस्के रस है ते भूल ना काल फंदा फस है तो प्रसाद।

हाथ कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चैन न चित्र। आदे उदार बुरद अगार न अनंत, आदंत न जानी अभिखा देव तुरंत। देव भयो न जाने जे मरम वेद कतेब, सनक सन केश नंदन पावई न हसेब। जाच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही श्री सकरो मुखचार। सर्व सपद पतार के तर जाप ही जय जाप, आदे अगादे अनाद मुरत अताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर यो विराज धराज राज प्रवीन। जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैष्णव के बिखे विराजे सूत्र भी व नाहे। गुड़ गौड़ न भील भिकर ब्रह्म से स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द भूम का स्वरूप। जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म भीन, तीरा जात न देव पूजा गौर के न अधीन। सर्व सपद पतार के तर जानी है जय ज्योत, शेष नाम सहस फन नेद पूरन होत। सो सोध हटा समय सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ। पड़त पड़त थके महाकवि गणत गाढ़ अनंत, हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत। वेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब, देव दानो मूड मानो जच न जाने जेब। भूत भप भवान भूपद आद नाद नाथ, अगन बाज जले थले में सर्व ठौर निवास। दे गे ने सने अभे नाथ अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व दे अनभीत। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल भेक, चक्र चैन न बरन जागो जात बात न भेख। रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग। सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व गोप्रद पाल, दीन बंदे आल स्वामी आदे पाल। दीन बन प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, बरन चैन चक्र जागो चक्र चैन कार। जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन। दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुर प्रमाथ, दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ। भूत भव भवे भगवान प्रमा देव अगंज, आद अंत नाथ श्रीपद परम पुरग अभंज। धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर माच्छ काच्छ अपार। भूम का जले थले में मानिया जय नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम। दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल दयाल गोविंद, मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद। अघाट अंडन दुष्ट खंडन कालू के काल, दुष्ट हरण पुष्ट करण सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम। सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड, भूम का जले थले में जप जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार दे दे जानिए सब विचार, आदे अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावई सिर उदर मुखचार। कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार। आद अंत न मद जागो भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व अपार, हार हार थके सबे नहीं पाई है तय पार। नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट तुरंत। गाय गाय थके गंधर्व

को आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कजी तब का मरण है कवन स्वर्ग नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म कवन योग को भोग है कवन अपकर्म अपकर्म दोहरा कहो सो सम का शोक है दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रेष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ छेद प्रकाश दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहाँ धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार तो प्रसाद दीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दंडन असर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रते चतरासर मारण पते धारण नरक निवारण गूढ़ करते अच्छा खंडे तेर चंडे खंड नंडे लखमते जय जय उसी में कासुर मर्दन रंप कपर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दोष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र बिंदु शरण महकमथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उड़दाधे जय जय उसी में कासुर मर्दन रंप कपर्दन आदमृते डावरू डबंग बबर बबंग भुजा फरंग तेज बरंग लंकुणिया फादे आयन बांधे सैर विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके आसी झमके फुंग फरंग जय जय हो सीमय कासुर मर्दन रम कपड़तन दय जिड़ंग चंडासुर चंडन मुंड विमंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणी फुंकारण जो जिते सरदार विबरखन ध्वज प्रकरण पुष्ट प्रहरकन दुष्ट मते जय जय हो सीमय कासुर मर्दन भूम का तल उर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रमाचन निर्दय नाचन धरमृत सुरोणत अचिंती अनल विनती जो जयंती खड़क धरे जय जय हो सीमय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे आगोग निवारण दोष प्रजानन श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अतुलंग जय जय हुसी मय कासुर मदन भूम का ताल जलन चाचर चमकारन चिच्छुर हरन धूम दुकारन द्रव मते दाढ़ी प्रदंते जो जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेदन अष्टभुजे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंघरु घमंकण शस्त्र घमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाठ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाहे अगमता है एक मृते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आद कुमारा गाल मृत सुर नर मन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मते कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुनर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाय पताल कासन ले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तन तुंत दुख दोग दहंती जाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी में शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तोन तिरंगण तेज सरे कर कसाक उठारे नरक निवारे अधम उधारे दूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आदतंके क्रूर गते जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन भृतर विमोचन सोच विशोचन कौज गसे दामनी प्रहासे सुखसन्नासे सुमरे सुभासे दृष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी भेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धन घंट का विराजय रुणजन भाजय ब्रह्म भाजय सुन सुरंग को कल सुन लाजय कल्पिक जय सुखराज मधुर दुर्जन दल दझय मंथन रिझय सब न भजय रोह रण जय जय उसी मय कासुर मर्दन चंड चकर्दन आदि उरंग चाचरी प्रजोजन दोष्ट विरोधन रोष अरोधन गुरुते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विजुंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद रंगी अगाद गते बिरड राज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदुरते
सुर नर प्रत पारण पति धारण दुष्ट निवारण दो हरे जय जय हुसी मय का सुर मर्दन वैश्व विदन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाश से उन्तर नासे ज्योत प्रकाश से अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष पधरखण बितल तले अष्टायत बाण बोली बाण संत बनाहर गुण गते जय जय हुसी मय का सुर मर्दन आद अनाद गाद प्रते दुख दो प्रवचन सेवक रचन सत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दुष्ट प्रदाय अर्दल गाहे दो घरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाणे संत जमाने आनंदे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन साध प्रदन दुष्ट हंते कारण करी गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकन छत्र झमकन दामिन दमकन आदवृते डुगडुगी दमंक बाग बबंक भुजा फरंक शुद्ध कते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आजुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उधारण एक भटे पापान बिहंडारण पतित उधारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचार

करता करीम का दर कृपाल अत भय अभूत अन भय दयाल दाता दुरंग दो दोगर हत जय नेत ने सभेद कहत कई ऊंच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जा अनंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पलर सूरा सिद्धा कराए प्रभ एक रूप वाय कह लखाए अनभिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अनभय अनास सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सा जय जात पर नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अविचल अपार जानी ना जाय जय रूप रेख बास तास है कौन भे कह नाम तास है कवन जाय जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरा सिद्धंग स्वरूप उद्दंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अनभिज तेज अनभिज अदाग जल थल मही पंतन दुरंत जय नेत नेत नेत उछरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई करण रोध जुगया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवये दीनन की प्रतिपाल कर नित संत उपार गनीमन गारे पछ पशु लग नानक नराधिप सर्व समय सबको प्रद पार पोकत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दयानिन दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है तुम दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचार रोजी ही राज लोक राजक रोग रोहन की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भगवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लखे भ्रम सिंह भरमाए वेद पुराण कते पुराण हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों केन श्री पद्मापद पाए आदे अनंत अगाध अद्वेग सो भूत भविक भवान बह है अंत भीन अनात्म अदाग अदोग क्षेत्र अक्षय है लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापद ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय है देव ही सने सबोधन ने मृग कैश है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मापद ले है रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते वह भान बचावे शत्रु अनेक चलावत घात तऊतन एक न लागन पावे राख दया बनो कर दे कर पाप समूना भेटन पावे और की बात कहाँ का तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव देव अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल रसा चल जज भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नी पार प्रवाह को नेत ही नेत भेद बतावे खोज सके सब ही कुजिया सुन हार परे हरात नावे नारद से चतुरानंद से रूप नारी से सब हु मिल गायो भेद कते बिना भेद लगे हो सब हार परे हरात न आयो पाए सके नी पार माप से सना सनातन धायो ध्यान धरो तह को मन में जय को मितो सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुना भेद निरपा समय पज हारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेदत हैं अन छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे आदे अनादे अगाधे अभेग अद्वेग जपियो तिन ही कुल

तीरथ कोट की स्नान दिए वान महाभ्रत हरे देश किरो देश फिरियो कर भेद तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टान धरे।

0: तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छत्र छत्र के धरिया छत्र धारियो के छलिया मा छत्रन के साल है दान के दिवैया मा मान के बढ़या अवसान के दिवैया कटैया जम जाल है जोत के जितैया अमृत के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया मा मान हुके मान है ज्ञान हुके गाता मा बुद्धता के दाता देव काल हुके काल मा काल हुके काल है पूर्व बिना पार पावे हिंगला हिमालय दावे गौर कर देरी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पवन साधना की देख बाधे आरब के आरबी आराधे तेरे नाम है फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगले तेरी मन सो तपस्या कर दिड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली की दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते हैं रो के रोहले मांग देश के मंगले वीर बांग सी मुंदले पापुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीशनी आवे तिब्बति ध्याय दो देह के दलत है जिने तो है ध्यानती ने पूरन प्रताप में उस ध्यान धाम के पूरन को सोहलत है पर देव देव तन को सहलतान देव महिन गंग से तो अंदेश कर लिए है गवा फिर रही में रही राग में प्रवीन और कम पर की दिन सलाम अधीन गही है कम है ना दिन सात अधीन पाई न पहाड़ जाए पुज में पास रबियर के उदारे पर कही आते हैं जगवाए कही आते हैं मुकार पाले पाछे की पूछा करता है
1: चांदनी सी पास गाड़ी रोटी हाल ही माल किसी फूल के

जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याईया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भव त्याईया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।